चेत आवे, चेत आवन का सदका सर्व सुख आवे। खालसे जी की देख देख फतह, चौकिया टंडे भंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा जी सावे बुलारे। खालसे जी नु नाम दान, सिखी दान, गुरमत दान, बुद्ध विवेक रात रक्षा दान। खालसे जी नु श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी दे शनान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार मेले बुलारे। श्री अकाल तख्त साहिब जी, बाबा अटल जी, संतोख सर जी, विवेक सर जी, राम सर जी, काल सर जी, तरन तारण जी, तापयाणी जी, खडूर जी, गुरु की बावली, श्री गोविंदवाल साहिब जी दे शनान, दर्शन दीदार मेले बुलारे। थम जी ननकाने जी, करतारपुर जी, श्री बाबे नानक डेरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब।

त्वा प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक सोग बिदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण।

जैसे एक आग ते कनु का गोट आग उठे न्यार न्यार हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केत कछ मछ केत उनको करत भछ केत अच वछ हो सपच उड़ जाएंगे। केत नब बीज अच बछ को करेंगे भज के तक प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जीव तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत केत रोबत मरत केत, जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंग वासी केत मदिना मका निवासी, के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त केत, सुआ पे चढ़त केत दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केत जल में रहत केत, ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानो बड बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घास हारे, चंदन लगाए हारे, चोआचार पूज हारे, पाहन चढ़ाए हारे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हारे, मडी मटली पहारे, भीतन लगाए हारे, छापसी गाए हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित

अलेखंग अभेखंग जोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपं नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा बासता को फिर कौन भेखं कहा नामता को कहा कह बखानो कहे मैं न आवै।

कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्वभूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के सुख सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साधकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं परम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जज विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि के पृष्ट के ऋष पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग हूं मद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शास्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागबानी कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या अभूतं प्रभा हो कहूं छल छाला थरे छत्रधारी कहूं राजसाजं।

करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत पान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चैन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप खै अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अटोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत सासरत उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अगन होत्र कई पौन हार कई गर्त कोट मृत को आहार कई गर्त साग पै पत्र भच नई तब देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धरम कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या बडंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नैकता सपायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत्सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं ददबदास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत सासरत उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जाच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ वर्ग दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह गई गेह वास गई ब्रह्मत देश देश अनुदास गई जल निवास गई अगन ताप गई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदप तास पायत न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदप दिष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन भोगटो सर्वधर्मा विहीन त्वा प्रसाद तोटक छंद जय जंपह जुगण जूह जुअंग भय कंपह मेर पयाल भुअंग तप तापस सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग।

दुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद क्षयं जे जात न पात न मात पितं जे रज्यं क्षत्रि छत्र चितं जे राग न रेख न रोग बणं जे द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंडह ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल रिपाल करार त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किए देव देव सरात पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जेह तात न मात न भ्रात सुतंग जेह रोग न शोक न भोग भुवंग जेह जम पह किन्नर जछ जुवंग नर नारण पुंसक जाहि किए गण

न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संग है न जाज है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न

है अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न द्वी है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभ्रम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत वेग है, बलि अरूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चयन वर्ण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम बीज है, सदा छिज तेज मानिए, न आद है, न व्याद है, अगाध

न रूप रेख रार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपी नराधपी करंध सेव है, सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्तपी पिसेखिये, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात बात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए। सदैव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे, तुरंत द्रोह देह के अनंत।

सर बठौर बिखेर मयो जह चक्र चिहन न चित्र आद देव उदार मूर्त अगाद नाद अनंत आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत देव वेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सनक औसन केश नंदन पाव ही न सेब जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्र मुख चार सर्व सबद पतार के तर जाप ही जह जाप आद देवा गाद दे जा नाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहो बिराज दिराज राज प्रवीन जछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैस नंगे बिखे बिराजे सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूमा का सनूप।

सेज नाम सहंस फरण हिनेद पूर्ण होत। सोत सोत हटे सफैसुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गरब। पड़त पड़त थके महागब गढ़त गाढ़ अनंत, हार हार कहियो

देव गंधर्व किन्नर मछ कछ अपार भूमा का जले थले महिमानिय जय नाम। दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु।

चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर विदे धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदान।

सुर मर्दन सात प्रदक्षण दुष्ट हंते। कारण करीले गर्भ कहिली जोत जतीले तुंद मते। अष्टायत चमकण शस्त्र जमकण दामिन दमकण आद वृते। डुग डुके दमंगे भागव भंगे भुजा भुरंगे शुद्ध गते। जय जय हो सीमा खासुर मर्दन हाथ जुगाद अनाद मते। चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण। एक भटे पापान बिहंडन दूज प्रचंडन खंडे अखंड।

कांवल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अंजन विहीन अनभंजनाथ जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप विचल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे वास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग विरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंछिज तेज अनभिज ताग जल थल महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत निसिदिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोख दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निसिदिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल कर नित संतु पार गनी मन गारे पछ पशु नग नाग नराधव सर्व समय सब को व्रत पार पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमावत भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज रोख रुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे अंगेव नवेव लख्यो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यो किन श्री पदमा पत पाए आद अनंत का तत्व सो भूत भविख भवान अभय है अंत विहीन नातम दुख चित्र है लोगन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पदमा पत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छय है जान को दे जान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुम्हरे सुत सुंदर श्री पदमा पतल है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते बात बचावे शत्रुवन एक जलावत घावत तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दे कर पाप सम्भूहन भेटन पावे और की बात कहा कहे तो सो सो पेट ही के।

वेद बतावे, खोज थके सब ही खुजिया, सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चंद्रानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो, वेद कते बन भेद लखयो, सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो, ध्यान धरो तह को मन में जह को अमित उज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब बजहार, भेद न पाए सके उन भेद को खेद है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न संग।

तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवह तुदजी जन नानक तिन कुरबाणा। हर ध्यावह तुदजी से जिन जुग मह सुख वासी, से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निर्भाओ जिन हर निर्भाओ ध्याया जी तिन का भाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जीते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

पार हमरी दुष्ट सभय तुम गावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवार सेवक सिख सभय करतार मोर अच्छा निज कर दय करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तो मैं छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो वर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दय मुझे उबरिए मरण काल का त्रास नवरिए पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अजदुज्यों करिय हो रच्छा राख लेहो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा पप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर पिशन प्रगासा।

जच्छन उपजायो आद अंत एकै अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तुसही को मारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकण को सेव गुण सुख दियो सतरण को पल मोह पद कियो घड़ घड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घड़ घड़ के पट पट की जान जब

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता। किल्बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अजदुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशद फल पावे, सोई दुख न तसै पियापत कोई अड़ल।

जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाह दोहरा। जब आयस प्रभ को भयो जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुना कब बाच दोहरा। ठाट भयो मैं जोर कर बचन कहा सुर न्याय। पंथ चले तब

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। श्री वाहिगुरु जी अरदास इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण धियाइय जिस डिठे सब दुख जाए। तेग

साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, पंज प्यारे चाली मुक्ते सर्व शहीदो मुरीदो, सचियारे प्यारे सथाई होए सहाय। सलोक महला दूजा, आपे जाने करे आप आपे आने रास, तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। सर्व समूह खालसे जी की अरदास, श्री वाहिगुरु जी के पास, जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, बिरद की पैज रहे पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा, मत ऊंची मत पद का राखा, आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फते, चौकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल रहे, धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान, सिखी दान, गुरमत दान, बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरिमंदर साहिब, अमृतसर सरोवर जी के स्नान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन दार मिले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी, संतोख सर जी, बबेक सर जी, राम सर जी, कौल सर जी, तरन तारन जी, तपियानी जी, खडूर जी, गुरु की बावली, श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान, दर्शन दार मिले बोलो जी। थम जी ननकाने जी, करतारपुर जी, बाबे नानक डेहरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर जी, कीरतपुर जी, पातालपुर जी, लखनौर जी, चमकौर जी, फतेहगढ़ साहिब जी, दमदमा साहिब जी, धमतान जी, मुक्तसर जी, पौंटे जी, तख्त पटना साहिब, हरिमंदर दिल्ली, महशीशगंज, रकाबगंज, बाला साहिब, बंगला साहिब, सतो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। साहिब जी पंजे साहिब जी, कपाल मोचन जी, रण मोचन जी, नानक मत्ते जी, तिलगन जी, जी नानक जीरा जी, शिकारघाट जी, हीरा घाट जी, माता साहिब देवा जी, संगत साहिब जी, मालटेकड़ी साहिब जी, बसमत नगर, दमदमा साहिब जी, बंदा घाट जी, नगीना घाट जी, श्री गंगा जी, गोदावरी जी के स्नान, दर्शन दार मिले बोलो जी। सर्व समुखालसे जी को नगारे आ, निशान साहेबा संजगत, तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहेब जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। बोलो जी बोलो बोलो जी श्री वाहेगुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज, अंतर जामी सचे पातशाह जी महाराज, आप जी के अजुर अमृतमयी शब्द बाणी, कीर्तन चौकी सोदा रहरा साहिब जी की अरदास, अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना बाणी, सच खंड विच प्रवान करना, आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होण, गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत का भला, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: मूर्ख पंडित हिकमत हो जो संजय करे प्यार
1: धर्मी धर्म करे बाबे मंगे मोख द्वार जति सदा वे जुगत न जाने छट पे घर बार सबको पूरा आपे को वे घटना कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तो ले आ जापे पहला पहला
0: बदी सब जगन

पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाए दाग आपे देह बढ़ियाई आपे ही कर्म कराए दाग मिढो बड़ा वड मेदनी सिरे सरता।